बताऊंगा। गरीब घर को अनिता गाँव का एकाएक मेला गाँव का 24 तो वाले 4 वर्ष देखे मुक्ति आय को छात्र हो। 2079 साल को पहले चौनी ज्योति मारे पति उन्होंने अपना घर छाड़े कृपा चाहिए जीवन बिताई रह व्यायाम शुरू भाई डर फेरी बजे लाइन बहादुर औजी।

समस्या सम्मत आंदोलन स्थानीय सरकार को दायित्व के करीब मुक्त कमैया को बस्ता सहित कई जगह को देखिन्छ। नगरपालिका मुक्त कमैया श्रम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी को लागि विशेष प्राथमिकता राखेर काम

0: प्रति मनस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता घटी वैवाहिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में द्वितीय यहां का स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता करने से कौशल्य अस्पताल भाषकरी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजोर नशा मुटु चेक जांच कैसे
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशुटी सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध सुविधा संपन्न लैब का सेवा उपलब्ध था शिशु को मुंह दाग बिना नशा दाग बिना हाथ कोरा निचलना बिरंगियों को नकला फिजियोथेरापी तथा एक उपजोथेरापी विधि में से उपचार कई जगह
0: नशा दाग बिना बिरंगियों को के बिना फेशल फिजियोथेरापी तथा एक उपजोथेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगा असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक हुकन नशा में 10% छूट की व्यवस्था करेगा कौशल्य अस्पताल प्राली बांसकरी शाखा 5 बांसकरी बर्दिया पुरानी पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसकरी बर्दिया संसदीय कोर्ट 11 चौथा

0: सन्तुलित खाना खाए, व्यायाम सत्य गरी,
1: धुमपान मदिना बसे दूर रही, खाना नियन्त्रण गरी,
0: आज निर्णयकारी जीवन यात्रा निसर्गमा पछि स्वस्थ जीवन अपनाई।
1: रेडियो पूर्वाभा सहकारी।

0: Sonntag, sowas zu Robotik, um als Journalisten auch noch aus der Gebrauchskarriere in diesem Raum zu machen.
1: स्वास्थ्य मन्त्रालयको समूहको
0: यस एंड का टिप से अपना प्लांट चलाते किया हो ये प्लांट शुरू के समय ऑक्सीजन स्टोर करके ट्रांसलेटना डॉक्टर को ट्राई करा ग्रामीण कर उपचार में स्वस्थता जाना अस्पताल कर केमो वार्ड में वो छुट्टा फार्मेसी संचालन करना से लिखा ये कफन में से रेडियोलॉजी को प्रयोगशाला सेवा सीमा संचालन में लेना था वहां के अनुसार लाइफ क्लब का समन्वय में चौथा ग्रामीण कुलना पूरा खर्च संचालन में लेना था किया धार्मिक अनुष्ठान से जल स्तर में निर्माण पीलर अस्पताल 2077 साल में सरकार में हस्तांतरण कई जिला संघीय सरकार को पूर्ण स्वामित्व ले सके आज सम अस्पताल का दरबंदी स्वीकृत नीति के अस्थायी करार व जानकारी स्वास्थ्य कर्मी से अस्पताल संचालन विद्यालय व अस्पताल मार्ग 14 जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत उस सबको करार में कार्यरत किया धान लगा का निर्माण प्रासाद क्षेत्र में व्यक्तिगत रोग तथा कीड़ा का समस्या देख प्रभावित समस्या पहचान कर उचित व्यवस्थापन कर सकने से उत्पादन इनामा उत्पादन में क्षति क्या समय हटाई से धान मध्य पड़ना मुख्य रोग कीड़ा वाता दक्षिण रोग नियंत्रण को पारिवारिक बासपुरी नगर पालिका का कृषि शाखा का कृषि कार्तिक राजु चौधरी से प्राध्यापक बाकी
1: Thank you.

आश्रय पर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी। नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्मक रूप में भी खेली। यहाँ कल स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता करे कौशल्य अस्पताल वास्तविक में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करा दी।

0: बढ़ने ज्वर नसा मुटु चेक जाँच कैसा
1: प्रत्येक दिन नसा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशुटी सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए।
0: चौबीस घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध बा तेरा शिशुको मुख बाल बिना नसा दाँत बिना हाथ गोरा नै चल्ना
1: फिजियोथेरापी तथा एकुपंक्चर थेरापी से सफल उपचार
0: चौबीस घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कैसा असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक मुकुल सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कैसा कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगरी शाखा 5 बांसगरी बर्दिया

को इतिहास के बारे में उन्हें गहन जानकारी रखती। उन्हें धीरे बुरा थे और वहाँ बचाव की तरह मुझे बुझा भर थी। उन्हें विस्तार बोलते रखो की लागे किसी बीच बीच में कई बेर सभा भारी उठती थी। ये मुख्यालय पुराना घटना था किन्तु कारण थी वो राष्ट्र के इतिहास का एक महत्व था ज्ञाता थी। मुखिया जी तीन मुखी हमको गाथा सुनाए के समय में आपको एडवेंचर्स वर्ष पची छोड़ी दी थी। उन्हें महान छात्र गंगा गली आपको विजय और पराजय में उन्हें द्वारा प्रदर्शित सुंदरता उदरता और विनम्रता को ग्रहण करना विधि अहंता होती। जय को समय कहानी को संबंध किम को मानी सदस्य जब मैं पहले पटक पुछेगा सुरवीर बाहेक अरू वीर को भयन करे तब मैं उन्हें राष्ट्र नेता छाड़े साना बना को चर्चा करना आश्चर्य लगे तर पची बात मैं अफ्रीकन इतिहास तथा सुने अफ्रीकन राय को बारे में खुले ठाव है दुई गुरा जाति को पूरा निंदा कर गुराहरूले खुसिएका जातिको एक भाइलाई अर्को भाइबाट अलग बनाएर जानी जानी अपमान गरे अनि उनको भाइ पनि थियो। उनीहरू ती वास्तविक शासक समुद्र पारी रहने गोरी रानी थिए। उनीहरू उनका प्रजा थिए तर ती गोरी रानीले उनका प्रजालाई दुःख दरिद्रता मात्र दिए। उनी मुखिया जस्तै नभएर सैतान जस्तै थिए।

लेकिन मैंने मैथुन नाथ मतलब बहुत से इतिहास और मंत्री जी का सफल न होने बताया मैंने मुझे बनाए हमारे एक जना प्रेम देश जिला नाम का अपनी अध्यापक बनी थी हमें उनको भी युद्ध का मतलब हमेश महोदय समय नीचे होने आठ विधि सचिव थी

करो आपके काफी हमें उनको देखो पहले तारीफ बताया जाओ उनको अभिनंदन करते उनको अनुसार वेलकम का आधार है हमें देखा सब बीमारी संस्कृत बना हुई थी हमने अंग्रेजी विचार अंग्रेजी संस्कार अंग्रेजी भारी संसार का समय उनका उत्कृष्ट बने शिक्षा दी थी ये ढंग जीवन अत्यंत कठोर थे रात 6 बजे पहले खाती बस्ती 47 हमें सुखा देवड़ा रोटी का पात्र भूलियो पानी